0: है
1: Laika Radio
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales on 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk Laika
3: Radio Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर भार होए,

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सत लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ई साला एती सुरत ना पाया नदियां ते वहां।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुग

0: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग।
1: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा।
0: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स।
1: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM।
0: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896-680-920.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
4: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
3: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
4: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
3: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
5: Travel Hub, your safari specialist to Masai Mara, Serengeti and Cape Town with Kruger National Park. Call Travel Hub.
6: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
7: Rebook your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to Kalyan Jewelers store at Green Street, Upton Park, London to grab this offer. Conditions apply.
8: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
10: Diamond Track of the Hour, sponsored by Malabar Gold and Diamonds. It's the season of jewelry and offers. Get free gold coins with diamond and precious gem jewelry.

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danube 11-11. Danube Properties. Danube
1: 11-11. Jannan. For 15 years, Jannan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us and for everyone. The Jannan and J-Dot anniversary sale up to 70% off is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at jannan.com and junaidjamshed.co.uk.
2: 07300998823. नोट किया? टी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: Let's go to Vegas, Los Angeles, New York, Miami and Disneyland Orlando with TravelHubWorld.com.
4: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
5: Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
6: I'm wondering about my future retirement.
5: You and me both. Well, I'm seeing an app. The HMRC app. You open it and there it is. Your state pension forecast.
6: What about gaps in my national insurance record?
5: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
6: Right, thanks.
5: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.
7: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
8: सेलिब्रेट एवरी गेट टुगेदर विद हल्दीराम्स
9: पंजाबी समोसास आलू टिक्की मोमोज स्प्रिंग रोल्स बीटरूट कबाब एंड मोर
8: ब्रिंग एवरीवन टुगेदर ओवर योर फेवरेट स्नैक्स फाइंड इट एट योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर
10: Haldiram's.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Go online, listen and listen back. LikeAradio.com.

0: So, after dark, fly to Aldi!
1: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri at United Ras 2.0, organized by OM Events, on Tuesday, 13th October at the Willows, Forest Road, Ilford, IG6 3SL. Join us for a vibrant celebration filled with festive energy.
2: Sponsored by Star Tours. Japan jana hai, to Star Tours ke saath hi jana hai. Star Tours. Travel once and you'll travel again and again.
3: श्रीनाथ धाम वैष्णव संघ हवेली हैरो में भक्ति के रंग के साथ अब चढ़ेगा गरबा का रंग.
4: गेट रेडी फॉर नव विलास फीचरिंग निकेश परमार एंड हिज टैलेंटेड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस ब्रिंगिंग यू एनर्जेटिक लाइव म्यूजिक एंड गरबा.
3: जॉइन अस 11th, 16th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर फ्रॉम 7:30 PM ऑनवर्ड्स.
4: एंड फॉर आवर लिटिल स्टार्स किड्स गरबा ऑन 11th, 17th, 18th एंड 25th अक्टूबर 2 PM टू 4 PM.
3: फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 07896680920.

0: Danew Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danew Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting. Danew Properties.
1: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
2: मेरे बेटे के लिए justice चाहिए.
3: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
1: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
1: Releasing nationwide by Z Studios.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है.
8: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
7: रात 8 बजे से टिल लेट. डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल.
8: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा.
7: कॉल प्रथम पटेल 0783830245.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: The Lyca Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the Festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Centre on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Centre, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
2: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.
3: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
4: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
3: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
4: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा
3: कॉल प्रथम पटेल 07838302450

0: Tesco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Sadco food containers.
0: The perfect food storage solution, Sadco food containers.
2: कभी कभी
3: catch the evergreen classic कभी कभी on its 50th anniversary.
4: मेरे ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए.
3: This Sunday from 2 PM at your nearest Showcase cinema.
4: हमने तय किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते से नहीं गुजरेंगे.
3: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/saff/UK.

0: MSC Princess Cruise Call Travel Hub
1: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833.
0: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
0: Visit travelhubworld.com.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, CTC की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज. चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए. आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक. खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com.
3: This Saturday, the 12 million pound Lotto jackpot must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
7: Must be won.
3: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Your Zindagi Maha Satho Microwave Food Containers
1: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: फ्री गोल्ड कॉइन्स और डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
3: यस बेबो,
2: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स, साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
2: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ग्रीन स्ट्रीट, ईस्ट लंदन एंड ब्रॉडवे, Southall.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk. UK.
4: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
6: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going. Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
7: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
7: Come on, let's go win this.
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
9: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी.
9: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ. विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड. बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी.
10: बीकानेर वाला.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: Fall in love with Santorini, Venice, Lake Como, Interlaken, Norway and Austria with TravelHubWorld.com.
14: Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
13: TravelHub, best service with unbeatable price.
14: At all protected.
13: Visit TravelHubWorld.com.
15: Al Noor, purana baitmat naam, nayi range ke saath, premium pulses, pure, fresh, full of natural goodness, every डे दाल से लेकर होल सम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस.
16: अनुज राडिया ऑन लाइका रेडियो.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
3: हैप्पी नवरात्रि फ्रॉम लाइका रेडियो नेटवर्क डोंट फॉरगेट नवरात्रि स्टार्ट्स टुमारो स्पेशल प्रोग्रामिंग स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा स्टार्टर्स एंड जेमिन फूड्स All about London's biggest Asian hits.

0: Surinderella, radio partner Laika Radio.
1: फ्री गोल्ड कॉइन्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही?
2: यस बेबो,
1: कैच क्या है?
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स. साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ.
1: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
2: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ग्रीन स्ट्रीट, ईस्ट लंदन, एंड ब्रॉडवे, South Hall.
3: The Laika Radio Network team and Alka Shah will be celebrating the festival of Navratri with International Siddhashram Shakti Center on Saturday, 10th October at Harrow Leisure Center, Harrow, HA3, 5BD. Join us for a joyful celebration of music, dance and devotion.
4: Sponsored by Tilda. Tilda Basmati, bringing a taste of home to every celebration. Loved by generations since 1970.

0: ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Mamster Golgappe and Golgappe da Pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
4: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
3: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
4: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैटसोमा
3: कॉल प्रथम पटेल 0783830 2450
5: फ्री गोल्ड कॉइन्स और डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
6: यस बेबो
5: कैच क्या है
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री गोल्ड कॉइन्स साथ ही सिलेक्टेड ज्वेलरी पर डायमंड वैल्यू और मेकिंग चार्जेस में अप टू 40% ऑफ का फायदा उठाओ
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ग्रीन स्ट्रीट ईस्ट लंडन एंड ब्रॉडवे Southall.
7: Wembley na juna ane janita party daro navratri nu ayojan kare to pachi ema kai j na ghate.
8: OMB event and Manik Chowk leine aavya chhe navratri 2026 garba queen Janvi Rawal sathe.
7: 10th october e pre navratri ane 11th thi 19th october navratri ni ramjhat Wembley ni R Kelvin school Wembley High Road ma.
8: To halo sau sathe mali sahyog aapo ane parivar sathe garbe ghumva jodao.
7: Tickets available at Manik Chowk ane vadhu mahiti mate sampark karo Bharat Patel ne 0789171743 9 जय माता जी
9: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
10: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
11: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
12: Next, Sonia with the Desi Vibe Show. On Leica Radio.
13: Hi, this is your weekend ka saathi Anuj Radia, and you can catch my show Brunch and Beats every weekend, Saturday and Sunday, between 10 a.m. to 1 p.m. across Greater London on Leica Radio.
12: 90s throwback plays now.
14: Leica.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: नवरात्रि का जोश, गरबा की मस्ती और सेलिब्रेशन में हो बीकानेर वाला का स्वाद।
2: बीकानेर वाला परंपरा भी।
1: गरबा से पहले या बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए छोले भटूरे, राज कचौड़ी, टेस्टी स्नैक्स और डिलिशियस मिठाइयाँ। विजिट हाउंसलो हाई स्ट्रीट, किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल या क्रैनब्रुक रोड, गैंस हिल, इल्फर्ड। बीकानेर वाला, इस नवरात्रि गरबा भी स्वाद भी।
2: बीकानेर वाला।
3: Experience the magic of Mexico City, Cancun, Mayakoba, Tulum and Caribbean Islands with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Hi, this is Akshay Kumar.
7: And
6: you're listening to Laika Radio.

0: Mamster no panipuri ane panipuri no pani.
1: All Mamster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: चाय लवर्स, आपका फ्लेवर कौन सा? मसाला का तड़का, ऑर्थोडॉक्स की होल लीफ शान, सीटीसी की कड़क किक, ब्लू टी का कलर सरप्राइज या ग्रीन टी का लाइट अंदाज? चा फॉर यू, पांच चाय हर मूड के लिए। आसाम से शुरू हुई कहानी अब आपके कप तक। खरीदने या बिजनेस इंक्वायरीज के लिए विजिट करें chaforyou.com।
3: अल नूर, पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है। अल नूर, टेस्ट द डिफरेंस।
4: लाइक रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रगासान। On this week's Leica Extra podcast, we bring you an unfiltered episode featuring Leica Radio Network's male presenters, including Raj Badden, Sandy Shah, Vish Bhatnagar, and Deep Raja.
5: One thing that has taught me about people, especially radio, in all the years I've been here, is the one thing that I absolutely detest is egos. That's what I've discovered about people, how people's personalities completely change.
4: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगस

0: स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: This is the Desi Vibe Show with Sonia.

0: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11. Danube Properties.
1: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
2: Like a Radio Network Proud Hospitality Partner Ragasan Feel Good Track Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@lykaradio.com।
1: London's biggest love songs continue. The Love Sound. Lyka.